0: आपको आज का जो शो देखना है तो आप जो है अपना फेसबुक पर जाएं और जो है सर्च फॉर जलाल इस्माइल आडा जो कि मेरा नाम है तो आपका जो आज का जो शो है वो भी आप आराम से देख सकेंगे एंड होपफुली यू विल एंजॉय सम लाइव म्यूजिक एज वेल जो कि अपना करोकी स्टाइल है. तो सबसे पहले माय गेस्ट यस इट्स ऑन माय राइट जो मुझे देख रहे हैं रेडियो जो अपना फेसबुक पर ऑन माय राइट वेरी ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड वन एंड ओनली साक्षी शर्मा मौजूद. हेलो साक्षी कैसी हो.
1: बिल्कुल फाइन आप कैसे हैं
0: सर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. सलाम नमस्ते.
1: सलाम नमस्ते.
0: जी जी जी. और फिर साक्षी के राइट पे लाइक ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन ऑन द जो है कॉफी जार वो के जो इतने बार आ चुके हैं माशाल्लाह वन एंड ओनली जहीर जलाल ऑल द वे फ्रॉम तंजानिया. जहीर भाई याली मदद.
2: अब तो कैनेडियन हो गए.
0: अब तो कैनेडियन हो गए यार. ऑफ कोर्स कैनेडियन हो गए.
2: हाय एवरीवन.
0: ठीक है जहीर भाई कैसे खैरियत है.
2: ठीक है शुक्र अल्लाह.
0: चलो बस ठीक है. आजकल जो है जिस तरह गर्मी का वेदर चल रहा है आज भी बहुत गर्मी थी बट होपफुली पीपल आर इंजॉइंग दिस वेदर. इसलिए ये जब वेदर का बारिश में बदल जाएगा हमें जो है पता भी नहीं चलेगा. यस लाइक आई सेड सो वी आर लाइव ऑन फेसबुक एज वेल एंड प्लस रेडियो सुसंगम 94.7 FM. कॉफी जलाल एक शो जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अगस्त की 7th को फ्राइडे नाइट को एट बटकड़ाही बैंकेट हॉल. वो क्या है जो अपने इवेंट का नाम है जो अपने शो का नाम है फिर रफी. फिर रफी क्या है कि हाँ लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग डेथ एनिवर्सरी ऑफ अ लेजेंड मोहम्मद रफी साहब और उनके सबसे ज्यादा सबसे बड़े एडमायरर उनके सबसे बड़े फैन सोनू निगम साहब उनका जन्मदिन भी जो है जुलाई 31st को पड़ता है. तो हम वी आर सेलिब्रेटिंग और यू कैन से वी आर ट्रिब्यूटिंग टू लेजेंड्स ऑन अ सेम टाइम ऑन अ सेम डे एट द सेम इवेंट फिर रफी के नाम से. तो उसमें जो आर्टिस्ट जो होंगे ऑफकोर्स यहाँ पर जहीद जलाल एंड साक्षी यहाँ पर मौजूद है. सो दे विल लाइव मोहम्मद रफी साहब और जो है सोनू निगम साहब के जो मशहूर इनके आप कोई भी गाने ले लें सारे इनके मशहूर है चाहे कोई स्लो सॉन्ग हो या तो रोमांटिक हो या तो फास्ट सॉन्ग हो कोई भी हो इनके सारे गाने मशहूर है. तो आपको बहुत मजा आएगा. 65% शो जो है सोल्ड आउट हो चुका है. तकरीबन थोड़ी बहुत टिकट बाकी अगर आपने लाइक यू नो एक्चुअली आई वॉन्ट यू टू कम एंड इन्जॉय इट्स बड़ा यूनिक शो है वन टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट. तो आपको बहुत मजा आएगा. सो यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी 5878994786. So let's start with some introduction from our two artists, Zahir and Sakshi. Sakshi, kaise ho tum? Sab apna khairiyat hai? This is the first time on the radio.
1: हाँ जी बिल्कुल ठीक
0: हूँ. हाँ हाँ लेकिन ये पहली बार रेडियो पे तुम्हारा आना है सर.
1: हाँ जी रेडियो पे तो पहली बार आ रही हूँ.
0: हाँ हाँ
1: जी.
0: तो फिर कैसा लग रहा है सोफा.
1: बहुत अच्छा लग रहा है.
0: बहुत अच्छा लग रहा है.
1: हाँ जी.
0: और ये कोई एडवर्टाइज चल रही है ऑन माय फेसबुक अकाउंट. ओ so we are facebook is paying us to do that I guess they advertise on my account. Hanif Mawani is watching. Zahir bhai ke bhai dekh rahe hain USA. Sakshi let's start you know okay let's start with you when we jab bhi aapko pata chala ki ye aisa show hone wala you'll be part of the event kaisa laga aapko.
1: I was so happy so excited. Uh-huh. Believe nahi ho raha tha but luck aapke liye bilkul aur ek फीलिंग बहुत अच्छी आ रही थी तो आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड.
0: चलो वेरी गुड. जहीर भाई ऑफ कोर्स यू नो अपना मैं सबको बता दूं कि ये जो सोच थी वो थी जहीर भाई की सोच थी. पिछले एक साल से हम बात कर रहे थे ऑन एंड ऑफ कि यार वो जो अपना जहीर भाई मुझे बोला कि अपना जलाल भाई वी शुड डू दिस शो. हमने सोचा सो फाइनली शो इज हैपनिंग ऑन ऑगस्ट 7th. जहीर भाई आपको ख्याल कैसे आया था.
2: देखो पहली बात तो यह है कि मैं रफी साहब का और सोनू निगम का इक्वली दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ और आप जानते हैं कि सोनू निगम जी से बड़ा फॉलोअर रफी साहब का कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया. तो एक शो लाइव इन लंदन 2013 में सोनू निगम जी ने किया था रफी रिजरेक्शन के नाम से. वहां से मुझे ये आइडिया आया था कि ऐसा कोई शो होना चाहिए जिसमें जैसा कि सब जानते हैं कैलगरी की मैं कि मैं किशोरदा के गाने भी बहुत गाता हूँ कुमार शानू के भी. तो एक छाप बन जाती है आर्टिस्ट की कि भाई ये शानुदा के गाने या किशोरदा के गाने गाते हैं. मैं चाहता था उस पड़ी हुई छाप को बदलना कि मैं रफी साहब के गाने भी गा सकता हूँ और एक अलग शो भी कर सकता हूँ. तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि मैं ये शो करना चाहता हूँ और अच्छा मौका ये था कि रफी साहब के 100 साल पूरे हुए 100 ईयर्स. सो ये 100 ईयर्स सेलिब्रेशन ऑफ मोहम्मद रफी साहब और ये जलाल भाई का आइडिया था कि इसमें सोनू निगम जी को लाया जाए.
0: yes, there was my
2: मैंने
0: part,
2: पहले
0: yeah.
2: सोचा था yeah. कि मैं इसको रफी साहब के नाम से मैंने इसका नाम पहले कल आज और कल रफी ये मैंने सोचा था इस शो का नाम. और फिर जब

0: इसमें सोनू निगम जी को लाने की बात आई तो मैंने सोचा इसको फिर रफी कर देते हैं. और सोनू निगम जो सबसे बड़े एडमायर हैं रफी साहब के, उनके भी कुछ गाने होंगे कुछ रफी साहब के. थोड़ा सा जलाल भाई मैं आपको करेक्ट करता हूँ. yes. सोनू निगम का बर्थडे 30th July और रफी साहब की डेथ एनिवर्सरी 31st.
1: ओके ओके ठीक है.
0: 22 वर्ष है
1: ठीक है.
0: तो जो है बस एक सोच है और इंशाल्लाह कैलगरी के लोगों को ये शो पसंद आएगा, लोग देखेंगे.
2: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: और बहुत सारे ऐसे गाने मैं रफी साहब के गाने वाला हूँ जो शायद रूटीन में कैलगरी में आपको सुनने के लिए नहीं मिले हैं. फास्ट नंबर्स भी होंगे, स्लो रोमांटिक गाने भी होंगे, कुछ सेंटिमेंटल सॉन्ग्स है रफी साहब के, क्लासिक्स हैं वो भी होंगे. हम कोशिश करेंगे कि हर तरह का एंटरटेनमेंट आपके सामने पेश करें. और कॉफी विद जलाल और मैं पर्सनली खुद साक्षी को इस शो में पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैलगरी में एज अ फीमेल लीड सिंगर ऑफ एनी शो. और काफी तैयारी की है, बहुत मेहनत की है साक्षी ने भी, और इंशाल्लाह आपको उनके गाने जरूर पसंद
1: है. ये साक्षी का पहला शो है ऑन कॉफी जलाल और पहला रेडियो शो भी हो रहा है.
2: जी सर.
1: आपको कैसा फील हो रहा है हम सबके साथ बैठ के आज?
2: बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अच्छा लग रहा है.
1: तो यू नो फॉर मी पर्सनली, यू नो अपना बींग ऑर्गेनाइजर, तो मुझे ये जो अपना ये जो शो की जो तैयारी होती है ना, पोस्टर तैयार करना, टिकट्स के बारे में तैयार करना, खुद का अपना वो टिकट सेलिंग की जो हमारी टीम है उसको तैयार करना, मैसेज वो, यू नो आई लव दैट प्रोसेस. चाहे उसमें तकरीबन 4 हफ्ते लगते हैं, 6 हफ्ते लगते, डिपेंड. फिर शो के दिन देन शो इट बिलोंग्स टू यू गाइज. फिर आप लोग जो करो शो को करोगे फिर लोग सालों तक याद रखेंगे.
2: बिल्कुल,
1: यू नो दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज. तो इंशाल्लाह लाइक जो वी आर डूइंग अवर बेस्ट कि सबको मजा है, अपना एंजॉय करें. और टिकट्स आर ओनली $30 एंड जो है $50 इंक्लूडिंग ए डिनर. इट्स एट बटकराई बैंकुट हॉल. और जो VIP टिकट आते हैं मे बी अबाउट 5 या 6 रह गए खाली. लेकिन जो जनरल टिकट्स है ऑफकोर्स यू कैन स्टिल लाइक स्टिल गेट इट. और जनरल टिकट्स आर अवेलेबल ऑन जो है अपना इवेंट ब्राइट एज वेल. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग. आपने आज का जो म्यूजिकल पार्ट है, लेट्स हिट द सॉन्ग. और विल स्टार्ट विद अवर जहीद भाई. जहीद भाई क्या पहला गाना क्या सुना रहे हो?
0: पहला गाना साक्षी से.
1: पहला गाना साक्षी से. लेडीज फर्स्ट.
0: मैं तो आता जाता रहता हूँ, लेडीज फर्स्ट ये तो पहली बार है.
1: इवन बेटर.
0: शुरुआत जो है वो मैं चाहता हूँ कि साक्षी से कीजिए.
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल.
0: आशा जी का बड़े ये खूबसूरत जो गीत है.
1: Well, yes, you need that. Sorry. That's it. That's
2: okay.
1: It.
2: We can keep there.
1: Yeah. तो उसको थोड़ा यहाँ कर लो यार. तो ये हमारी साक्षी जो है पहली बार शी इज अ पार्ट ऑफ द इवेंट, पार्ट ऑफ द कॉफी जलाल स्टेज. सो इंशाल्लाह एवरीवन विल एंजॉय. और आई थिंक जितना मैंने इनको सुना है बहुत ही टैलेंटेड है. इंशाल्लाह एवरीवन विल लव हर. And then inshallah everyone will ask her to bring her back for the next event.
2: Thank you so much, sir.
1: So let's hope everything goes fine and let's do it.

0: थैंक यू सो मच साक्षी. वी जस्ट ट्राइंग टू ऑफर डू समथिंग न्यू हियर कि आपको सॉन्ग का जो म्यूजिक भी सुने और फिर आप जो साक्षी की आवाज भी जो सुन सके. रेडियो पर तो इट्स गोइंग वेरी क्लियर, लेकिन खाली है कि हमें लाइक इज एनी वे यू कैन कनेक्ट दिस टू दिस, लेट्स सी. तो अगर आप वहां से प्ले करोगे यहाँ पे भी आएगा. Yeah, देखो तो VTN के नाम से होगा. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अपना लिसनिंग एंड वाचिंग कॉफी जलाल ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM. या हमारे साथ जो हनीफ भी जो है जुड़े हुए हैं, सिमरन भी जुड़ी हुई है, रिजवान भी है, जरीन जलाल ऑफकोर्स जो है जैर भाई की मॉम भी जुड़ी हुई है, रोजीना अमीरुद्दीन लाडक माई ब्रदर इज वॉचिंग टू एंड सुनीता दू पढ़ा लो सुनीता जी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एज वेल. देखो उसमें कनेक्ट हुआ.
1: कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियो VTN पंकर मिनी.
0: या दैट्स व्हाट इट इज. या कैन यू प्ले, लेट्स सी इफ समथिंग प्लेज और नो.
2: आई हैव टू वेयर दिस.
1: या मैं निकाल दूं.
0: या या लेट्स सी इफ यू हैव दिस प्लेज.
2: कैन आई मूव दिस.
0: या या
2: ओह थैंक यू सो मच. या
0: इट इज कमिंग.
2: या इट्स कमिंग.
1: ओके ये नेक्स्ट गाना होगा.
0: Yeah? Okay, so let's hope this
1: one. की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, सेम में से हो सकेगा.
0: वी कैन ट्राई, लेट्स सी. या इट्स अ डू इट. लेट्स सी वी आर जो है वी कैन ट्राई, लेट्स सी होपफुली दैट वर्क्स. तो यू नो लेट्स एंजॉय वन मोर ट्रैक. आई नो देयर आर सो मेनी पीपल आर वाचिंग राइट नाउ, सो लेट्स स्टार्ट वन मोर. लेकिन वो रेडियो पे जाने के लिए वी नीड द
2: ओह या
0: इट माइट गेट क्वाइट.
2: ग्रेट.

गोल्डन हार्मोनी केयर और जो हमारे जो जो जो अपना टाइटल स्पॉन्सर है गोल्डन हार्मोनी केयर और हमारा जो मेगा स्पॉन्सर है प्राइम रिज कंस्ट्रक्शन इन कंपनी. आज का जो शो है इसको स्पॉन्सर किया ऑप्टिम आईवर एंड ऑप्टोमेट्री. इनकी दो लोकेशन है नोलन हिल एंड एड्री में. अगर आपने जो आंखें चेक करवानी है लेंसेज चाहिए अगर आपको जो सनग्लासेस चाहिए ऑफ कोर्स यू कैन कांटेक्ट ऑप्टिमा आईवर एंड ऑप्टोमेट्री 4034636666. फिर अगर आपने कोई इवेंट करना हो शादी जैसे कोई अपने

0: शादी का कॉन्सर्ट हो यू कैन इफ यू नीड अप टू 350 पीपल वी कैन रेंट सुल्तान बैंकवेट हॉल इनका फोन नंबर है 4032806677 गुलाम रसूल साहब ही बी हैप्पी टू हेल्प यू ए टू जी वैक्यूम अवर गुड फ्रेंड हनीफ मौजी 4032704882 अगर आपको वैक्यूम चाहिए घर के लिए गाड़ी के लिए ऑफिस के लिए और इफ यू नीड टू सर्विस एनी वैक्यूम यू कैन कॉल हनीफ मौजी 4032074882 शफीन जीवानी अगर आपने कोई टिकट कोई इवेंट कुछ आ रहा हो अगर आपने कोई ऑफिस के जो कुछ भी है अपने प्रिंट करवाना हो या तो डिजाइन करवाना हो यू कैन कॉल कास्केट प्रिंटिंग 4032502202 अगर आपने मॉर्गेज लेनी है फ्रॉम द टीडी बैंक अलीशा बिनिंग शी इज अवर very good sponsor she can get you the best rates available in the business she works for TD Bank 4036819687 4036819687 Boston Pizza in a subtle town jahan par halal options bhi available hain for any private party or for any birthday party or just for the food you can go to Boston Pizza in Settletown Circle 4035905503 4035905503 आज का जो शो है हमारे पास ऑफ कोर्स जो मेरे पास साक्षी एंड जही यहाँ पर मौजूद है वी आर जो है आज हम कुछ नया ट्राई करें शो पे जो पहले कभी नहीं हुआ लाइव म्यूजिक लाइव रेडियो की हिस्ट्री में ये वी आर ट्राइंग टू प्ले करियोकी अगर आप जो रेडियो सुन रहे हैं यू कैन लिसन बोथ म्यूजिक एंड वॉइस वेरी क्लियरली नो इश्यूज खाली लेकिन जो हमारे जो दोस्त जो है फेसबुक को देख रहे हैं सो यू माइट बी यू कांट हियर द म्यूजिक इसलिए हमें माइक ऑन करना पड़ता है तो फिर वो म्यूजिक जो है कट ऑफ हो जाता है बट रेडियो पे म्यूजिक जा रहा है थ्रू द जो है आईपैड सो दैट्स वन ऑफ द ऑफकोर्स जो है विल ट्राई टू टैकल इट फॉर द नेक्स्ट टाइम कि हम किस तरह उसको जो है हाउ कैन वी गो अराउंड इसलिए जैसे माइक ऑन होता है सो देन इट जो है डिसकनेक्ट द जो है हमारा स्टूडियो स्पीकर तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक डोंट गो एनीवेयर जब तक मैं जहीर भाई से थोड़ी बात भी कर लूं कि हाउ कैन वी गो अराउंड हियर ताकि आप जो हमारी फैमिली जो फेसबुक को देख रही है उनको भी जो म्यूजिक की आवाज जो है बिल्कुल आ सके सो यू आर लिसनिंग KWJ वर्ल्ड स्टेज ऑन कॉफी विद जलाल ओनली ऑन रेडियो संगम 94.7 FM
1: एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757
2: मेनू लभण नालों फोन करना सी अकाल फॉरन एक्सचेंज दे रेशम सिंह सिद्धू नूं वधिया रेट ते बेस्ट सर्विस लई कॉल कर 403-607-4408
3: इंडिया नूं डालर भेजने होण जां रुपये मंगाउणे होण ता रेशम सिद्धू नाल रेट जरूर चेक करो तसल्ली बख्श ते तेज सर्विस लंबे समय तो भरोसे योग सेवावां लई जाने जांदे हन अकाल फॉरन एक्सचेंज दे रेशम सिद्धू 4036074208 अकाल फॉरन एक्सचेंज
4: पूरा साल हो गया गाना सुनती नूं बस कैलगरी च कार लैण दी फीलिंग आई लई जायो वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है उना दे आउण तो पहला मेनू कार चाहिदा है
5: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल जिन्ना दी सलाह नाल हुण घर एक नहीं दो लवांगे पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई मैं सुनया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है
4: जी हां मैक्सवेल सेंट्रल रियल्टी नाल काम कर दे जग्गी टिल्लो नाल एक बार जरूर गलबात करो जग्गी टिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445 4036162445
6: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया
7: की होया
6: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन
7: ओहो रह गए ना फेर पीछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ाच ते

0: यस जी हाँ, वेलकम बैक टू कॉफी जलाल ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM. जी अभी मेरे साथ साक्षी है, जहीद जलाल है, और यू नो जो है ब्रेक से पहले अपना दोनों ने दो गाने सुपर डुपर गाने गए. आई होप यू कि आप सबको अच्छे लगे होंगे. यस वी आर लाइव ऑन फेसबुक इज वेल. तो यू नो लेट्स जस्ट थोड़ा जो हमारे आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए. सो विल सर्व विद द लेडीज फर्स्ट. जो साक्षी ऑन माई राइट. साक्षी, तुम्हारा म्यूजिक का जो करियर या हॉबी कब से स्टार्ट हुई?
1: सर एक्चुअली मेरी जो मदर हैं वो एमएन सितार हैं.
0: एमएन सितार?
1: हाँ जी.
0: वाओ.
1: पंजाब यूनिवर्सिटी से. और उनको बहुत शौक है मेरी मम्मी को सिंगिंग का. आफ्टर मैरिज वो अपने शौक हम अपनी दोनों बेटियों पे निकाले. मेरी सिस्टर ने एमएन म्यूजिक ऑनर्स की हुई है मेरिंडा कॉलेज से. तो मम्मी सुबह पुराने गाने लगाती थी और वो मैं सारे सुनती थी मम्मी के. और मुझे आज वो भी दिन याद है जब मेरी मम्मी मेरी सिस्टर को लेके स्कूल के लिए प्रिपेयर करवा रही थी. और उन्होंने बड़ी कोशिश करी मुझे म्यूजिक सिखाने की. दो मैंने क्लासिकल कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम सीखा हुआ है. म्यूजिक के लिए मैं बैठी भी 3-4 दिन, पर मैंने सीरियस नहीं लिया सर. सीरियस लिया अब धीरे धीरे. मम्मी मेरे को गाने भेजती थी, मैं सुनती थी. जहाँ जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, जहाँ गाजियाबाद में मोहम्मद किंग्स में, फिर वहाँ कल्चर प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए तो वहां शुरू करी मैंने सिंगिंग सर. थोड़ा थोड़ा स्टेज परफॉर्मेंस दी, जो थोड़ा सा लोगों को अपनी जान पहचान वहां बनाई सर.
0: जी जी जी जी.
1: तो वहां लास्ट 2025 में मैंने एक भजन गाया हमारे जो ऑनर है आरती मोहन के सामने. तो उन्होंने मुझे कहा साक्षी तुम लॉ छोड़ दो और तुम सिंगिंग में ध्यान दो.
0: तो यू आर लॉयर?
1: हाँ जी, आई वॉज बैक इन लॉयर. मैं उन्हीं कंपनी में काम कर रही थी, लीगल एडवाइजर.
0: अच्छा.
1: तो उन्होंने कहा साक्षी तुम, उनके हाथ में एक पिलो था, स्टिल मेंबर, उन्होंने पिलो ऐसे थ्रो किया और उन्होंने कहा साक्षी छोड़ दो तुम लॉ.
0: अच्छा.
1: एंड प्लीज अब सिंगिंग में ध्यान दो और आई नो तुम बहुत अच्छा करोगे और तुम शुरू हो जाओ बस. जब तुम ऑफिस जाओ तो मैं सुनना चाहती हूँ कि तुमने सिंगिंग शुरू करी है भाभी. तो आई स्टार्टेड सिंगिंग हेयर और दो सबकी ब्लेसिंग्स हैं. तो जो सिंगिंग का गुण आया वो मुझे अपनी माँ से आया है सर.
0: माशाल्लाह.
1: और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती है. इंडिया जब भी जाती हूँ ना तो वो इतने पुराने गाने देती है मुझे और मुझे कहती है मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ तुम मुझे गा के सुनाओ. आई लव यू मम्मी. और आज मैं जो भी कर रही हूँ आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं. और सबसे ज्यादा सर अगर सपोर्ट मेरे साथ इस समय जो हैं वो मेरे हस्बैंड हैं जो मेरे को हर जगह लेके जाते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं. यही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फैमिली का सपोर्ट है सबसे ज्यादा. इन्होंने मेरे को भी बहुत साथ दिया है.
0: नहीं मेरे वो वहां से बड़े बड़े आंखें निकाल रहे थे, मेरा नाम नहीं ले रही.
1: नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है. आयो नहीं जही जी है. मैंने फिर करीम सर के लिए गाया, बीना जी के लिए भी गाया हुआ है, नीलेश जी के लिए भी गाया हुआ है
0: जी.
1: तो बस वो धीरे धीरे एक शौक पड़ गया सर मुझे. अब आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच.
0: इंशाल्लाह जितने हमारे जो गेस्ट आएंगे उस दिन आई थिंक दे विल बी सरप्राइज कि ये साक्षी कौन है. तो अच्छा अच्छा साक्षी अपना साक्षी ने जो है लॉ छोड़ अपना लॉ छोड़ दिया उसने.
1: नहीं सर लॉ तो मैंने अभी पैरालीगल लॉ ओंटारियो से की हुई है और मेरा फैमिली लॉ में बहुत इंटरेस्ट है. अभी मैंने नेशनल टाइम मीडिया का पार्ट हूँ. मैं नेशनल टाइम मीडिया का तो वहाँ फिर वहाँ का भी बहुत एक्सपीरियंस रहा मुझे. वहाँ मैंने इंटरव्यूज लिए तो मेरा तो स्केल चेंज होती जा रही है लाइन. बट आई एम रियली एंजॉयिंग दिस सिंगिंग सर. मेरे को पैशन हो गया है.
0: दैट्स गुड, दैट्स गुड. जहीर भाई आपका आई डोंट नो, मैं आपको पूछूं नहीं पूछूं कब से शुरू किया. जहीर भाई तो मंजे में खिलाड़ी हैं और जब ना अभी 4 साल हो गए हमने पहला शो किया था. अभी वो आया था फेसबुक ने बताया 4 साल पहले. जहीर भाई
2: 30 जुलाई 2022 ये पहला शो
0: पहला शो हमने किया था.
2: आपने ही कॉफी विद जलाल का सबसे पहला शो ऑर्गेनाइज किया था
0: जी,
2: जो हमने साथ में किया. उसके बाद हमने 2023 में 24 में 25 में
0: जी.
2: और ये मेरा जलाल भाई के साथ शायद 7वां इवेंट है.
0: अच्छा सर, अभी हमने लास्ट जो किया था वो न्यू ईयर्स ईव पे किया था
2: जी.
0: उसके बाद पे किया न्यू ईयर्स
2: ईव. उसके बाद वैलेंटाइन पे
0: प्लान था लेकिन बात
2: वजह से हो नहीं पाया था. लेकिन जो है वो जितने भी इवेंट रहे हैं सब अच्छे रहे हैं. लेकिन ये जो इवेंट है ये काफी यूनिक है. पिछले एक साल से आपके पीछे लगा हुआ था कि जलाल भाई ये यूनिक आइडिया है मेरे पास. और इंशाल्लाह हम आगे भी जो है वो और आइडियाज मेरे पास इसके लिए हैं. जैसे हम रफी साहब का कर रहे हैं तो मैं बैक ऑफ द माइंड मेरे किशोरदा के लिए भी एक इवेंट इसी तरह का मेरे दिमाग में चल रहा है. वो इंशाल्लाह हम अगले साल
0: भी लेंगे. डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट परफॉर्मेंस?
2: सबसे पहली परफॉर्मेंस
0: वो कहाँ थी कब थी
2: सबसे पहली परफॉर्मेंस तो कराची पाकिस्तान में
0: थी
2: वो मुझे लगता है

0: 92 की बात आप कर
1: 92?
0: तकरीबन 92 की hmm. और दारुसलाम में मेरी पहली परफॉर्मेंस डायमंड जुबली हॉल में थी
1: hmm.
0: दो लाइन गाने को मिली थी
1: अच्छा
0: तो दिलाल भाई आपने तो मेरे पूरे स्ट्रगल की कहानी सुनी
1: इंटरव्यूज
0: मैंने कहां से शुरू किया मैं जैसे साक्षी ने कहा उस तरह से मैं भी ये कहना चाहूंगा कि इस फील्ड में जितना भी नाम कमाया वो गुरुजनों से सीख के कमाया हमेशा मेहनत की लेकिन एक नाम मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई हनीफ जलाल जो इस वक्त डेलस में है
2: जी।
0: पहला कदम संगीत की दुनिया में उन्होंने ही रखवाया था प्लैटिनम ऑर्केस्ट्रा के साथ वो गाते थे
1: अच्छा,
0: तो जब उन्होंने ये देखा कि मेरे छोटे भाई को भी शौक है गाने का तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे गाइड करना शुरू किया वो गाइड किया उन्होंने तब मैं इस रास्ते पे चल पाया और आज जहां भी पहुंचा हूं उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है।
1: नाइस नाइस नाइस। तो यू नो जब भी अपना अपना साक्षी यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट बॉलीवुड
2: हां जी सर
1: तो अपना तुम्हारा कौन फेवरेट आता है हु इज योर फेवरेट
2: मैं ज्यादातर लता जी के गाने सुनती हूँ आशा जी के मेरे फेवरेट वही हैं सर अलका याग्निक जी भी मेरी बहुत उनके भी गाने सुनती हूँ सर मैं गाने सारे सुनती हूँ लेकिन पुराने जो घर पे चलते रहते थे मम्मी के वो सुन सुन के वो आदत सी पड़ गई सर मुझे लता जी के ज्यादा सुनना
1: अच्छा अच्छा
2: जी सर
1: और अभी अपने इंडियन आइडल के जो अपना रियलिटी शोज होते हैं कैसा लगता है उसको देख के डू यू लर्न फ्रॉम इट
2: बहुत कुछ सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनकी मेहनत दिखती है सर तो उनसे ही सीखने को मिलता है कि मेहनत करो और आगे इंशाल्लाह
1: मेहनत करेंगे तो ही फिर उसका फल मिलेगा
2: जी सर बिल्कुल
1: जैसे आपने वीसा लिया था राइट वहां पर क्या नाम था
0: मैंने टांजानिया में 2004 की बात है तंजानिया में सारे गांव तंजानिया लेवल पे जो हुआ था ईस्ट अफ्रीका लेवल पे हुआ था उसमें मैंने
1: पूरा
0: जी उसमें ईस्ट अफ्रीका से काफी पार्टिसिपेंट्स थे और उसके बाद तकरीबन 300 पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से गोइंग टू द फाइनल 32 देन राउंड ऑफ 16 देन राउंड ऑफ 8
1: अच्छा
0: उसके बाद उस्ताद सुल्तान खान साहब ने गाना दिया था लागा चुनरी में दाग फाइनल राउंड वो गाया था और उसके बाद मैं विनर बना था वहाँ पे
1: वाओ
0: तंजानिया में
1: डू रिमेम्बर कि जब जीतने के बाद क्या क्या अपना किक क्या फीलिंग थी
0: जलाल भाई आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि 300 लोगों में आपका पहले ऑडिशन देना वहां से सेलेक्ट होना जब आप ऑडिशन देते तब आप ये सोचते भी नहीं है कि मैं वहां तक कोशिश ये होती है कि इस कंपटीशन में एक अच्छे मकाम तक पहुंचना है और लोग अच्छे गाने सुने तो उसमें जो है फाइनल राउंड्स तक पहुंच जाना आखिरी 8 पार्टिसिपेंट तक और उसके बाद फिर उसमें से क्योंकि उस वक्त आपकी आंखें बंद होती है जब आप इंतजार कर रहे होते हो कि किसी 8 में से एक का नाम आएगा और जब आपका नाम बजता है तो वो यकीन नहीं होता कि हमारा नाम ही अनाउंस हुआ
1: नहीं आई थिंक यू नो अपना इस तरह की कॉम्बिनेशन आई विश के वी कैन डू इन कैलगरी इंशाल्लाह वी विल सम टाइम अभी तो यू नो हमारे जो कैलगरी की कम्युनिटी बड़ी हो रही है काफी लोग यहाँ पे भी आ रहे थे आई एम श्योर वी विल हैव मोर पीपल टू कम एंड सपोर्ट एंड वॉच और तो इंशाल्लाह जो हमारा जो शो है अपना अगस्त की 7th को आइए इंजॉय कीजिए अपने रफी साहब के गाने होंगे सोनू निगम साहब के गाने होंगे और अपने डिनर के साथ $30 and $50 VIP $50 जो है अपना जनरल टिकट है एंड VIP जो है ऑलमोस्ट गॉन लेकिन जो है $30 टिकट आर स्टिल अवेलेबल सो यू कैन टेक्स्ट मी 587-899-4786 आप जो है मुझे फोन कर सकते हैं साक्षी को या तो हमारे दोस्त जो हैं जहीर भाई को भी आप जो है फोन कर सकते हैं और हमारी पूरी टीम है एक्चुअली जो अपना ये द वन हू हेल्प मी टू डू दिस काइंड ऑफ शो जिसमें बीन आशर भी है सलमा जदावी भी है करीम सुमार भी है लता पटेल शिनाज डायमंड मुर्जी सिद्धार्थ शर्मा जी यस ऑफ कोर्स सोहेल राजा राहत अब्दुल्ला तबस्सुम जुलराज गुलना ढालवानी ये जो मैंने अभी नाम लिया सिद्धार्थ शर्मा ये साक्षी के हस्बैंड है ही इज डूइंग ए फेसबुक लाइव वो हमें हेल्प करें आज फेसबुक लाइव करने में तो या जो है ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू गेट वन गोल कि शो जल्द से जल्द जो है सोल्ड आउट हो जाए ताकि बाकी जो हमारा जो फिर हमारा फोकस है वो जो शो की जो है प्रोडक्शन में लग जाए कि हमें शो किस तरह पेश करना है एडवर्टाइज क्या करनी है ओके सो स्पीकिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो हमारे गोल्ड स्पॉन्सर है गोल्डन केयर मैं आपको सही नाम दूं आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट कीप मिसिंग दैट गोल्डन हार्मनी केयर ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर है हमारे मेगा स्पॉन्सर है प्राइम रिच कंस्ट्रक्शन इन कंपनी जो कि हमारे गुड फ्रेंड

0: क्या नाम उनका? सुनीता जी.
1: हाँ जी, सुनीता जी.
0: हाँ, उनके दामाद हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प. फिर हमारे जो हैं इंडियन टेवर्न, वो भी हमारे वन ऑफ द स्पॉन्सर हैं. प्लस फिर हमारे जो है मेमस्टर, जो कि जैन कौर, उनका जो इंडियन स्नैक्स आता है, दे आर वन ऑफ द स्पॉन्सर एज वेल. हमारे फोटोग्राफी के दोस्त हमारे सुहेल काशिफ, ही विल बी आवर ऑफिशियल फोटोग्राफर फॉर दैट. और ऑफकोर्स रेडियो रेडियो सोसंगम इज अवर जो है फॉर द मीडिया पार्टनर. एंड अगर आप स्पॉन्सर करना, इट्स वेरी वेरी वेरी वेरी जो है अफोर्डेबल. यू कैन कॉल मी एट 587-899-4786. और इंशाल्लाह जो नया हमारा पोस्टर है इज गोना कम आउट वेरी सून विद ऑल द स्पॉन्सर्स, कि उनके जो लोगो जो है लोगो लगे होंगे. तो अगर आप बस आपने मिस नहीं करना, इंशाल्लाह यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन. कुछ और बोलना चाहोगे साक्षी? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? दिस इज फर्स्ट टाइम ऑन द रेडियो, कुछ भी बोल सकती हो.
1: नहीं नहीं सर, आप पूछिए, कुछ भी पूछना चाहे तो. डेफिनेटली शौक तो आपको मैंने बता दिया कि सुनते सुनते सुनते आया. और सर की बात एक याद आई, मैं भी पहुंची थी इंडियन आइडल का पार्टिसिपेट करने. मैंने घर में किसी को नहीं बताया.
0: अच्छा, ओके.
1: और मैं चली गई तो वहां से मेरे पापा का फोन आया. कहा हो? सॉरी पापा. हाँ,
0: तो उन्होंने देखा होगा.
1: कहा हो? मैंने कहा जी इंडियन घर आइए. क्योंकि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, वो उनको ज्यादा हमारा स्टेज पे चढ़ना भी नहीं ज्यादा अच्छा लगता था. अब मुझे याद है, मैं अपनी सिस्टर की मैरिज के बाद एक रेस्टोरेंट में ब्रेम्पटन में गई. और वहां मम्मी पापा सब बैठे हुए, तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा चाहे गाना गा ले. मैंने पापा की तरफ देखा, पापा ने कहा जाओ गा लो. मैंने वहां गाना गाया सर, वहां के रेस्टोरेंट.
0: कौन सा गाना था याद है?
1: सर मैंने ये गाना गाया था वाला अजीब दास्ता है. तो अजीब दास्ता.
0: छोड़ गाना, एक दो लाइन.

0: उनको लगा कि मैं और एक बात ऐसी हुई कि उनको लगा कि मैं यहीं रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे स्टॉप किया और कहा कि आप हमें ज्वाइन कर लो. मैंने कहा सर मैं तो सस्कातून से आई हुई हूँ अपनी सिस्टर की मैरिज में. तो बस भी वहां से धीरे धीरे आपके रास्ते खुलते हैं और आपको एक लगता है कि यार अगर लोग आवाज पसंद करें तो क्यों ना गाया जाए. और इतना अच्छा मेरे को मिले हैं सब और मेरे को सपोर्ट करते हैं, प्लेटफॉर्म है. तो सर अभी अभी भजन भी मैंने गाया है, अभी
1: जागरण
0: में गाया है. रॉक जसपाल भैया ने मुझे, भाभी ने मुझे कहा कि साक्षी तुम हमारे लिए गाओगी. मैंने कहा डेफिनेटली गाऊंगी. और कोरस भी किया मैंने कविता जी के साथ और विनीत सिंह के साथ और बहुत अच्छा रहा. तो ये सर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खुल जाता है. पहले थोड़ा सा मुझे होता था पर अब मुझे खुल गया है.
1: खुल गया चलो कि बिफोर वी आस्क जो है जही टू जो सिंग फ्यू लाइंस. आज का जोश कॉफी जोशो इसको स्पॉन्सर किया ऑप्टिमा आईवेयर एंड ऑप्टिमेट्री. इनका फोन नंबर 4034636666. सुल्तान बैंकवेट हॉल इंशाल्लाह विल बी डूइंग अवर नेक्स्ट शो इन नवंबर देयर एट सुल्तान बैंकवेट हॉल. इनका फोन नंबर 4032806677. गुलाम रसूल साहब ए टू जी वैक्यूम फॉर योर वैक्यूम सर्विस. इफ यू वांट टू बाय वैक्यूम कॉल हनीफ माओजी 4032074882. कास्केन प्रिंटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिंटिंग एंड डिजाइन शफिन जीवानी 4032502202. मोबाइल मॉर्गेज स्पेशलिस्ट अलीशा बेनिंग. इफ यू नीड एनी मॉर्गेज एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द टीडी बैंक यू कैन कॉल हर 4036819687. एंड द बॉस्टन पिज्जा इन सेरल टाउन जहां पर हलाल ऑप्शंस आर अवेलेबल. इनका फोन नंबर है 4035905503. संजीव कार्ड उनके जो है ओनर है, इज वन ऑफ आवर स्पॉन्सर एज वेल. सो फिर रफी स्पॉन्सर के एक बार फिर से गोल्डन हार्मनी केयर एज अवर टाइटल स्पॉन्सर. प्राइमरीज कंस्ट्रक्शन इन कंपनी ये हमारे जो है मेगा स्पॉन्सर प्लस इंडियन टेवर्न रेस्टोरेंट इंडियन टेवर्न रेस्टोरेंट एंड जी मेमस्टर जो कि इंडियन फूड है दे आर अवर स्पॉन्सर इंक्लूडिंग फोटोग्राफी बाय सुहेल काशिफ एंड मीडिया पार्टनर रेडियो संगम 94.7 FM. जहीर भाई कोई गाना हो जाए बिफोर वी गो.
2: गाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके घर में दादा दादी नाना नानी जो भी हैं उन्हें शो पर जरूर लाइए, क्योंकि रफी साहब के गानों का शो है तो उनको उनकी जवानी याद आ जाने इसलिए ऐसा न सोचिए कि वो एंजॉय नहीं करेंगे, वो आपसे ज्यादा एंजॉय करेंगे इस शो को, तो उन्हें लाना मत भूलिएगा.
1: yeah, nice,
2: yeah. जाते जाते मैं एक रफी साहब के गाने की दो लाइन आपके सामने पेश करूंगा और इसका स्पेशल वर्जन आपको शो पर वेस्टर्न स्टाइल का वर्जन एक मैं पेश करने वाला हूँ शो में, वो आपको सुनने को मिलेगा.
1: जी
2: बहुत ही खूबसूरत गाना केसी लॉर्ड्स ने इसकी अरेंजमेंट की थी और बहुत सारे म्यूजिशियंस ने इस गाने में

0: ब्यूटीफुल,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू, प्लीज आइए, हमें ज्वाइन कीजिए और हम सब आपके आपकी वजह से ये शो बहुत अच्छा जाएगा, हमें पता है आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए 7 अगस्त मत भूलिएगा.
1: परफेक्ट, तो बस तो ये था आज का शो कॉफी जलाल KWJ वर्ल्ड से, तो इनसे इंशाल्लाह मिलेंगे अगले ट्यूसडे को. जो हमारे इस्माइली बहन भाई हैं उनको सब बताएं, उनको एक बार फिर से जो है मुबारकबाद हम देते हैं कि उनके जो स्पिरिचुअल जो है लीडर है प्रिंस रहीम आगा खान, ही इज कमिंग टू कैलगरी ऑन 23rd जो कि नेक्स्ट थर्सडे है, विद सम जो है गवर्नमेंट मीटिंग प्लस उनके जो विजिट भी होगी विद देयर जो है कम्युनिटी. तो इंशाल्लाह जो अगला शो होगा नेक्स्ट ट्यूसडे वी गोना हैव सम खुशहाली गीत, जो हमारे इस्माइली बहन भाई है वो समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. सो विल हैव सम इस्माइली artist song jo ke bahut se release hue hain recently, to hum like we gonna play those songs and we gonna celebrate the visit of one and only His Highness Prince Rahim Aga Khan jo ke Calgary pahunch rahe hain inshallah on July 23rd ko for the special visit for the community and some government meetings as well. Zahir bhai, thank you so much.
2: Ek cheez mention karna chahunga, ye jo 7th august ka show hai Rafi sahab ka, इसमें मेरे साथ साउंड इंजीनियर करीम सुमार
1: है, यस.
2: और करीम सुमार जी बहुत अच्छे साउंड इंजीनियर हैं और इस तरह के शो के लिए वो बेहतरीन जो है वो काम करेंगे मैं जानता हूँ, और इंशाल्लाह उनके साथ बहुत मजा आएगा. और अगली बार जब हम रेडियो का प्रमोशन करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी हमें ज्वाइन
1: इंशाल्लाह ही विल जॉइन अस फॉर द नेक्स्ट टाइम. और ये करीम सुमार के साथ वो जो कॉफी जलाल का ये पहला शो होगा इंशाल्लाह. लॉट ऑफ शोज टू कम. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग कॉफी जलाल ऑन रेडियो स्टेशन 94.7 FM.
3: The time is 9 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.
4: FM रेडियो सुरसंगम, हर हफ्ते 20 घंटे सुनो, मंडे टू फ्राइडे शाम 4 to 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा, शाम 8 to 9 जितेंद्र पन्नू, रेडियो सुरसंगम .ca, फोन 403-585-0910. रेडियो सुरसंगम.
5: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands, listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community anytime, anywhere.
4: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ, ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ .ca, ਫੋਨ 403-585-0910. ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ.
6: The following program speaks to the South Asian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

17-4696 है जी, ओएसिस स्माइल मेडिकल। प्रोग्राम दे अगले स्पॉन्सर मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स ने जी, कैनेडा दी सब तो वड्डी डीलरशिप है, स्टार डीलरशिप दा अवार्ड इना दे कोल है। जेकर तुसी मर्सिडीज दे ब्रांड दे नाल जुड़ना चाहुंदे हो ते गौरव शर्मा नू कॉल कर लो, ए तुहाडी डील नू होर भी सौखियां करनगे। इना दा फोन नंबर 4039036757 है जी, मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।

0: ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
1: अपने घर का दूजा ना आया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
2: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसी प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
1: वधिया घर खरीदना, पैसे बचाने ने, सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह।
2: सिर्फ घर खरीदण ले ही नहीं बल्कि वेचना भी होवे ता बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
1: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
2: रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
1: जेकर कर रहे हो घर खरीदण ते वेचण दी प्लानिंग, मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उहनां दी वेबसाइट mandeep.realtor।
2: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868।
0: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ। ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ। ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 587-617-4696 587-617-4696। ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। 587-617-4696।
3: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
1: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू,
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कनरिज बुलेवार्ड,
1: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्योर,
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
1: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
1: 403-835-2222। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट स्वीट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका, फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमी नू 403-617-2111 ते, ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।
4: ਵੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮਿਲ, ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ।
5: ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ?
6: ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, LMIA ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਅਪੀਲਸ। ਕਾਲ 403-436-6000 ਔਰ 403-406-2004।